गई कथूरी गंद जो बन जांदे ना डरा जे शह प्रीत न जाय फरीदा किती जो बन प्रीत बिन सुख गए कुमलाय फरीदा चिंत खटोला वान दुख

साहिब सच्चे वेख एहो हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाप पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सत्संगी जनों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक गोद दा आनंद पा रहे हो, सरवण कर रहे सी गुरु के कीर्तनिया पासों रब्बी बाणी दा कीर्तन श्री आसा जी दी वार दा। मन बिरतियां एकागर करिए ते जुड़िए चल रही लड़ी वार कथा जो भगत फरीद साहब जी दे सलोका विचों चल रही है। भगत जी दा फरमान नाती तोती संभ ही सुती आए नचेंदा, जीव इस्त्री ना तोके। संभ ही दा मतलब हुंदा है सज संवार के अपना शिंगार करके, ना के कपड़े बदल के स्नान पान करके शिंगार हार करके सब

जिन शिरिया तिने सुवारिया पूरी कोई करामात आप सृजन हारे तारिया सिखी अत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारा वारिया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया

इन्हें पत्थर भी रोड़े, इन्हें रुख भी तोड़ लै, इन्हें बंदे नूं भी रोड़ लिया, इन्हें पशु ते पंछी भी रोड़ लै, इन्हें कच्चियां चट्टानां भी रोड़ लईआं। ते जदों ए नदी सागर दे विच जाके लीन होई ना, ते कहन लगी देख सागर, मैं तेरी किन्नी सेवा करनी आ, मैं तेरे वास्ते किन्नियां कीमती वस्तुआं लैके आउनी आ, तेरे नाल इन्ना प्यारे, मैं तेरे लई जिहड़े तोहफे लैके आउनी आ, जे मनुख अड़दा मैं ओहनूं रोड़ लैनी आ, पशु रोड़नी आ, पत्थर रोड़नी आ, मैं मिट्टी दियां चट्टानां रोड़नी आ। ते सागर हस के कहिंदा नदिए, मुद्दतां तो तू मेरे कोल पिटावां लैके आउनी ए, पर मैं एक गल तेरे तो पुछनी चाहना, कदी बैंत दा रुख क्यों नहीं लैके आई, बैंत दे रुख नूं क्यों नहीं आंदा। ते मैं अर्ज करां, उदाहरण दा हमेशा एक पख लईदा, हालांकि बाणी विच वास दी बड़ी साहब ने नखेती भी कीती है, क्योंकि थोथा है, गंढा वाला है, कुल घाती है, पर एक पख लैणा है। कहन लगे नदिए, सारे लैके आउनी है, बूटे बूटियां पटनी है, बंदियां नूं रोड़नी है, पशु रोड़नी है, पर मैनूं दस खां, कदी तू बैंता पेटा क्यों नहीं लियांदा। ते अगो नदी ने उत्तर बड़ा सोहना दिता, कहन लगी ओ सौ सागर, कदी आस भी ना करी मैं बैंत नूं पट सकां। कहन लगा हद हो गई, इन्ना तेरा बहाव, ते बैंत नूं पट क्यों नहीं सकदी। कहन लगी ओनू झुकण दी जाच आ गई आ, जेड़े झुक जांदे ने उहनां ते मेरी पेश कोई नहीं जांदी, जेड़ा अड़ जाए उहनूं मैं जड़ां तों पट लैणी। भाई साहब कहन लगे, याद रखियो मना, देख एक झखड़ पिया चलदा ई, एक नदी वहिंदी पई आ, तू इन्ना कु निवरता भी चला जाई, बैंत दी तरह अपने आप नूं झुकाण दी जाच सिख लै। जदों तू निम्रता भी झुकण दी जाच सिख गया, ते चेते रखी वकारां ते जितने मर्जी नदियां भी तूफान आउण, ते वकारां दी ताकत नहीं तेनूं पट के लै जाण, क्योंकि तेनूं गुरु दे चरणां विच झुकण दी जाच आ गई। निम्रता विच इन्ना आनंद है। भाई साहिब भाई वीर सिंह दा वचन है, कहन लगे सागर पुछदा नदिए, सारे बूटे बूटियां लियावें, सागर पुछदा नदिए, सारे बूटे बूटियां लियावें, पर ना कदी बैंत दा बूटा इत्थे आण पचावें। नदी आखदी आकड़ वाले, सब बूटे पट सकां, पर जो झुके वेग रौ रुख नूं, उस ते पेश ना कोई जावे, जिन्हों झुकण दी जाच आ जाए ओहदे उपर मेरी कदी पेश नहीं हो जांदी। हजूर कहिंदे ने जेड़ी गुरसिखी दी ए निशानी है, भाई गुरदास कहिंदे ने पहला सबक है, तू निम्रता विच आ जा, अपने आप नूं झुका लै, जे कितो तेनू नाम दी दात किते गुरमुख प्यारा मिलदा है, तू ओदे चरणां विच झुक जा, अपनी खोंद नूं कायम ना करी। शायद यही कारण मेरे गुरदेव ने झुकण वास्ते बाणी विच कहा, ते कहन लगे जे झुक जाएगा ना सिखी नूं सिखेगा, ते कहन लगे फिर सुखी बसै मशकीनिया, आप निवार तलै बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले। जे तेनू सजना झुकण दी जाच आ जाएगी, फिर गुरु तेरे भांडे विच कोई दात पाएगा। मेरे साहब ने केवल क्या नहीं सगो करके भी दिखाया। धन गुरु रामदास उन्हां दे चरणां दा ध्यान टिकाइए, जेड़ा दीन दुखियां दी बांह पकड़न वाला है। कई बारी जदों गुरु रामदास जी दा नाम मुख विच आउंदा है ना, ते कदी अंदर भिजा होवे ते चरनाल छिड़ जांदी है, क्योंकि गुरु रामदास तेरे दर ते कदी किसे दी झोली खाली नहीं आई, तेरे दर तो झोलियां भरियां जांदियां ने। क्यों? क्योंकि तुसी आप ओ दिन देखे ने, गरीबी कट्टी है, लोकां दियां ठोकरां खादियां ने, गालां खादियां ने, किन्ने किन्ने दिन भुखियां रह के घर गुजारा कीता है, ते अज जदों कोई भुखा, कोई बेघरा, कोई तन तो नगण, ते कोई दुखी जांदा है, तू उसे तरह देख के पसीज जाना है, ते ओदे दुख नूं देख के ओदी झोली विच तू दात पा दे। अज भी तेरे कोल किरपा है। ते गुरु रामदास उन्हां दे जीवन विच एक बड़ा प्यारा वचन आउंदा है, कहिंदे ने गुरु रामदास जी दे नेत्रां विचों कदी नीर नहीं छिछुकिया, चेते रखना। ते गुरु रामदास किन्ने कु गुरु अमरदास दे नेड़े हो चुके सन। एक वारी लाहौर तो गए, ते कहिंदे ने बेमौसमे अंब मिल गए, ते अंब बड़े रसदायक सन, ते रस्ते विच ना जदों अंब बन्ने कपड़े विच लपेटिया अंब, ते सोचिया मैं अपने गुरु दे चरणां विच रखांगा, मत्था टेकांगा, नमस्कार करांगा, गरीब दी भेटा स्वीकार करनगे। ते कहिंदे ने रस्ते भी जदों देखिया ते ओ अंब जिहड़ा है ना

पुरख निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करहु किछ मेर उपावहु डूबदे पत्थर तारे जियड़ा अग्न बराबर तपै पीतर वगै काती परनवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती परनवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती खम अवगुण भरे एक गुण नाही

0: बारा और स्थान न को मुरारा, हे मेरे दाता जी के गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हरिमंदर साहिब विच होवे। उस वेले फिर क्या कहन लगे, गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप तुसी शीश ते लवो। महाराज मैं कहन लगे हां तुसी, ते नाल हस के कहिंदे ने अज तीकरा असी अगे चले तुसी पिछे चलते रहे हो, गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लैके तुसी अगे चलो असी तुहाडे पिछे चलांगे। सिखा जिहदे सिर ते गुरु होवे गुरु उहदे पिछे तुरदा है, जिहदे हिरदे विच गुरु वस जाए उहदे पिछे भी गुरु तुरदा हुंदा है। कदी पढ़खां गुरु ग्रंथ साहिब दे बचन के, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछै लागू हर फिरै कहत कबीर कबीर। उत्थे शब्द वरते साहिब बुढ़ा आगे कीना, ते पाछै सतगुर सुख लीना। जदों तुरदा चवर धन गुरु अर्जुन साहिब करदे रहे। आ कई साडे सज्जन उन्हां दा बड़ा जोर लगा पिया बाबे बुढ़े साहब वालियां साखियां नूं खंडन करन ते। गुरमुखो उस करनी वाले दे तुसी पैरां दी धूड़ वर्गे भी नहीं। इंद्रा इंद्री जित सिख, मैं एक वारी अर्ज भी कीती सी, ओए असीं चार दिन गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करके दावे करने आ 113 साल टोकरी भी धोई, मज्जां भी गुरु घर दीआं चारियां, हल भी वाहिया ते गुरु ग्रंथ साहिब दी सेवा कीती। 113 सालां विचों कोई दिन नहीं जिदन बाबे बुढ़े ने गुरु नाल गिला कीता हो। एडी वड्डी सेवा एक सदी पूरी 13 साल उत्ते, ते कमाल दी गल जल चलाना भी इहो जिहा। जदों शरीर छड्डिया ते गुरु हरगोबिंद साहिब ने वधाइयां दित्तियां, पुछया जी महाराज क्यों, कहन लगे जेड़े जित के जाते ने उन्हां नूं वधाई देईदी, अफसोस उन्हां दा करीदा जो हार के चले जाते। बाबा बुढ़ा साहिब दे शीश ते गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप तन गुरु अर्जुन देव जी चौर करदे जाते ने, ते उत्थे फिर शब्द वरदे ने। जदों अंदर गए हरिमंदर साहिब पहुंच गए, सिख संगत गई, बाबा बुढ़ा साहिब पिछे होण लगे, तन गुरु अर्जन साहिब दे शब्द से बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, खोलो दर से प्रकाश करो, अज पहला प्रकाश देने। बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, ते ग्रंथ खोल के की करो, लेओ आवाज जिन्हों आप जी मुख वाक हुक्मनामा कहिंदे हो। उस वक्त कहिंदे सन आवाज, आवाजा देना। कहन लगे बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेओ आवाज सुने सा पंथ, अदब संग तब ग्रंथ सो खोला। अदब नाल बद्दा चटी नहीं खिच के रुमाले इधर सत्ते इधर सत्ते भी अपना काम नबेड़िया, अदब साहिब तब ग्रंथ सो खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। ते की बोलिया, सुही महला पंजवां, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम, तरत सुहावी तार सुहावा विच अमृत जाले छाया राम। गुरु के सिखो कभी तको, देखो गुरु की बाणी जिथो विचार आरंभ कीती सी, फिक्के बोल जे शब्द साडे अंदर नू स्पर्श करदे ने, असी भुलदे नहीं कि इस बंदे ने मैनू ए कहा, मैं सारी जिंदगी नहीं भुल सकदा। जे फिक्के बोल तेरे अंदर नू स्पर्श करके कौड़ियां करदे ने, ते सुखमणि दे मिठे बोल तेरे अंदर नू ठंड नहीं पाणगे। कि गुरु साहिब दा जपजी साहिब तेरे अंदर नू सुकून नहीं देगा, कि आसा की वार तेरे अंदर नू ठंड नहीं पाएगी। ते जदों किते बाणी नाल जुड़ेगा ते फिर मेरा गुरु बोल के कहेगा, सिखा ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हरनामा। जदों बाणी गाएगा आवाज आवेगी, कोई गावे को सुने, हर नामा चितलाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए। जदों तू बाणी नू सुनेगा ते सतगुरु बोल के तेनू कहणगे के अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन हो गए परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल कोई मनवा, सतगुरु का दर्शन पाए जियो। गुरमुखो 400 साल आ रहे है अगले साल, भरोसा कोई नहीं सवास दा भी आज ते जीद है। एक गल चेते रखो, जिथे लड़ी शुरू कीती जे ना, बड़ी चंगी गल है, गुरबाणी का प्रवाह चलना चाहिए। पर एक अर्ज करांगा, जे धन गुरु ग्रंथ साहिब नूं दिलों प्यार करदे हो ते जेड़े अजे तिकरा बाणी नहीं ना पढ़दे, अगली 1 सितंबर नहीं आना नानक शाही कैलेंडर अनुसार, पूरा 1 साल पिया है अपनी जबान नाल, अपनी अखां नाल, अपने कन्ना नाल एक एक गुरु ग्रंथ साहब का पूरा सहज पाठ कर लो तो समझांगा 416 साल मनाया होया सब लोग आप भी करो उस दिन अरदास करो अज एक प्रण कर लो दाता साल तक जेड़े महीने विच भोग पाते उन्होंने चरणों नमस्कार जेड़े नहीं पाठ करते हुण तां बड़े तरीके हो गए ने गुरु ग्रंथ साहब दियां सीढ़ियां भी मिल जांदियां ने नाल नाल बोलो नाल नाल सुनो ते स्वाद ताए जे आप भी नाल 400 अखंड पाठ तो बाद इथों दा हर एक संगी आप गुरु ग्रंथ साहब दा पाठ करन वाला होवे ते अगले साल नूं उस तों अगों जदों पाठ दिवस आवे प्रकाश दिवस उदन संगत खुद पाठ करे तां गुरु ग्रंथ साहब तां कृपा करनगे इनियां कु बेनतियां प्रवान करे आ जे सिर्फ संखेप जी मैं अर्ज कीती है वैसे बाणी दे बेअंत पथ ने जिन्हां नूं आपां विचार सकने हैं कल तों जो भाई साहब जी होरां ने भी कह दिता है अरदास जिथे आपां छड के गए सां 40 मुक्तियां तों आरंभ करनी है इनियां कु बेनतियां प्रवान करे आ जे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु
1: ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैपं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होशी पी सच नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुर कौ बल बल जाइए आप मुक्त मोहि तारे ऐसे गुर कौ बल बल जाइए आप मुक्त मोहि तारे ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाव हो दिखम नदी जाए तरनी ना हों जति सति नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पया परणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया

प्रभ मेरे का बड प्रताप, जिस मिले मन हुए आनंद, सो सतगुर कहिए है मन की दुविधा बिनस जाहे परम पद लहिए।

संगत भी सब तो पिछे जाके बह जाए। सतगुरु गुरु अर्जन साहब ने स्वरूप तैयार किया, उस वक्त ढोलकियां छैणिया नाल शब्द पड़े गए, जोटियां भी शब्द गाए गए, ते आई आवाज। सिख सोचते ने गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप गुरु अर्जन साहब शीश ते लैणगे। सिख कह लगे महाराज स्वरूप लवो, ते देखिया बाबा बुढ़ा किथे वे। बाबा बुढ़ा हाथ विच डंगोरी पकड़ के सब तो पिछे खलोता। सतगुरु ने बांह पकड़ के कहा बाबा अज पिछे नहीं, अज तू अगे लगेगा, मैं तेरे पिछे तुरांगा। कमाल दी खेड, किन्ना कुछ सिखा तू गुरु नू रिझा लिया सी। कहन लगा दाता मैं पिछे चंगा लगना। कहन लगे अज तक तू पिछे वे, पर जिस गुरु ग्रंथ की सेवा तू कर लगा तेरे सीस ते गुरु ग्रंथ साहब होवेगा, तू अगे चलेगा ते तेरा गुरु अर्जुन तेरे पिछे तुरे। उस वक्त कहिंदे ने साहिब बुढ़ा आगै कीना, ते पाछे सतगुर सुख लीना। पिछे गुरु अर्जुन साहब चौर करी जान, बाबे बुढ़े दे नेत्रां विचों नीर दी चढ़ी लगी। मन भी सोचदा बुढ़िया कर्म तो तेरे नहीं सन, पता नहीं गुरु नानक तेरे ते किन्ना कु त्रुट चुका है। आखदे ने हरिमंदर साहब आए, उस वक्त बाबा बुढ़ा जी ने स्वरूप थले रखिया, पिछा हो गए। सोचिया गुरु अर्जन साहब प्रकाश करनगे, गुरु अर्जन साहब ताबिया बहणगे। उस वक्त गुरु अर्जन साहब ने कहा बुढ़ा साहेब हुण असी थले बहांगे, तुसी ताबिया बहो। शब्द कह बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, बुढ़ा साहब गुरु ग्रंथ साहब खोल, ले ओ आवाज हुक्मनामा ले, सुने सब पंथ। एदा मतलब गुरु के सिखा, गुरु दे हुक्म तो उत्ते कोई हुक्म नहीं हूं। किसे बंदे नू पुछन दी बजाए तू गुरु ग्रंथ साहब तो आके पुछी, क्योंकि तेरा गुरु अपने शरीर ते हुंदिया कहिंदा बुढ़िया तू शब्द पर संगत गुरु की आवाज सुनाई। बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, ले ओ आवाज सुने सब पंथ। अदब संग तब ग्रंथ सो खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। की बोलिया संता का कार्य आप खलोया, हर कम करावन आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छा राम। प्रकाश हो गया, बाबा बुढ़ा जी ने जपजी साहब का पाठ किया। साध संगत सतगुरु ने कहा आई तो बाद सेवा तुसी। पुछया सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब का सामनू कितने आसन करना है। कहन लगे कोठा साहब जिथे साडा आसन है। अगला सवाल सी सतगुरु तुहाडा आसन कित्थे। कहन लगे अज साडे पलंग ते गुरु ग्रंथ साहब, ते जिथे गुरु ग्रंथ साहब होवेगा मेरे लिए तख्त ना लायो, अज तो बाद गुरु ग्रंथ साहब दे पलंग दे थले मेरी चादर विछा दे। कमाल दी गल, बाबा बुढ़ा चादर शाम नू विछांदा है, अज भी अकाल तख्त ते जाओ शाम नू गुरु ग्रंथ साहब दा स्वरूप जदों जांदा है एक छाप थले चादर चिट्टी विछी है वह गुरु अर्जन साहब के नाते। एदा मतलब सी सिखा गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच जितना मर्जी कोई ब्रह्म ज्ञानी होवे गुरु समर्थ भी गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच थले बहेगा, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच गद्दी ला के बिल्कुल ना बहे। एदा मतलब सतगुरु ने हर पूरना पाया। गुरु अर्जन साहब शहादत लई तुरे, बाबे बुढ़े नाल सलाह कीती, बाबे बुढ़े नूं पिछे छड्ड गए। साध संगत मैं थोड़ा जा समा तुहाडा लैणा, एकाग्रता जरूर बख्शिया जी। बाबा बुढ़ा जी दे अंतले दिना तक मैं अर्ज करना चाहना, गुरु हरगोबिंद साहब गुरु अर्जन साहब दी शहादत हो गई, बाबा बुढ़ा जी आ गए अमृतसर दी धरती ते। जिदन शहादत बारे सुनिया गुरु हरगोबिंद साहब ने एक स्पीच दिती, लैक्चर दिता, बाबा बुढ़ा कोल सी। कहन लगे साध संगत ए मत सोचो असी मुठ्ठी पारा, अज कुछ दिन होए ने तुहाडी ठंडक नूं तपदी होई तवी उत्ते सार दिता है, ए मत समझो असी थोड़े हां, तीली तां एक ही बड़ी है जंगल नूं तबाह करन वास्ते। पानी दे सोमे जदों निकलदे ने निकलदा छोटी दी थां तुम्हें चश्मा, पर जदों दरिया बन जांदा उहदे अगे कोई अटकदा नहीं। याद रखियो भावें तुसी थोड़े हो पर घबरायो ना, गुरु तुहाडे नाल है। उस वक्त 500 नौजवान उठ के सामने आया, कहन लगा दातिया दो वक्त दा प्रशादा दे दई, 6 महीनिया बाद एक पोशाक दे दई, ते ए शरीर तेरा जिथे चाहे जदों चाहे इस ठीकरे नूं पन्न लवे। बाबा बुढ़ा जी सब कोई देखते पए ने। उस वक्त सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब नूं गुरियाई का तिलक भी जिथे दिता है। बाबे ने दो कृपाना पाईयां ने।

कान हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो है बन आवे रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन

देख लै भांड्या खलो जाया कर, बर्तन मांग लै, टप्पड़ झाड़ दिया कर, जां कितें लंगड़ विच लकड़ां अगे डाह दिया कर, चुंबिया विच चुल्हे विच लकड़ अगे करिया कर। ते बाबे दी नजर पै गई पित्तल दी गागर ते, कहन लगा जोध मैनू दसेंगा गुरु साहिब नू इशनान कित्थे करांदे ने। कह लगे सतगुरु अमृत वेले इशनान करदे ने, सेवक गागर पानी दी भर के उत्थे पहुंच जांदा। ते बाबे ने एक कपड़े दा लिया उन्नू दूजी पकड़ ली पित्तल दी गागर। कह लगा जोध अज तो बाद अमृत वेले मेरे गुरु दा इशनान मैं करावा करांगा, मेरा दिल करदा मैं अमृत वेले अपने गुरु की कृपा लां। 7 साल का बजुर्ग बंदा हद होगी मथियात नहीं कि सवा दी चूंडी सट्टी ते बंदा बन गया, कन दी मैल कड्डी ते बुलाड़ा देवता प्रगट हो गया। यह प्रतख इतिहास है। 7 साल दे बाबे दे मोढ़े ते गागर इतिहास कहिंदा कि पिछले पैर इन्होंने ब्यास दरिया को जाना, खडूर तो ब्यास जाना, आप इशनान करना, ते कहिंदे उस वक्त पानी की गागर भर के मोढ़े ते रखनी, रात नूं तुरना ब्यास पहुंचना, अमृत वेले गुरु अंगद साहब दे उठन तो पहला पानी की गागर लैके पहुंच जाना। ते कई बारी सोची दा बाबा अमरदास इन्हां 12 सालां विच किहड़े समय तू आराम कीता होवेगा रात नूं, क्योंकि तेरी तां सारी रात आउण ते जाण विच निकल जांदी होवेगी। गागर भर के लियाउणी ते गुरु दे उठन तो पहला पहुंच जाना, ते किहने इशनान कराना, कुछ दिन इशनान कराया, पता नहीं रात इन्ना कु सेवा विच आ गया। कह दिता गुरु अंगद साहब जी एक सेवा मैं होर दे दो, जेड़ी सेवा कर दी सी मां खीवी वह सेवा सी गुरु अंगद साहब के बस्तर धोने। कह लगे एक तो बजुर्ग बाबे ने पानी की गागर लेनी, ते दूजा माता खीवी दे चरणा विच खलो के क्या कह लगे मां, मां शब्द वरत्या, एक कृपा मेरे ते कर दे, इस बुढ़े से बड़ी कृपा तुसा कीती है, जेड़े गुरु अंगद साहब के बस्तर होंगे ने ना, इन्हां मेरे बस्तरां दी मैनू सेवा दे दे, क्योंकि ओदी मैल मेरे अंदर दी मैल नूं ला के रख देवेगी। शब्द बड़े प्यारे सन, ओदी मैल मेरे अंदर दी मैल नूं धो देगी। गागर पानी दी ते गुरु अंगद साहब के कपड़े धोने, ते कहिंदे ने समा लंघी गया, बाबा अमरदास प्रेम नाल भिज के सेवा कर लग पए। साध संगत एक बचन कुछ को इतिहास विचों मिलता है, इथों तक कि इनी सेवा विच पुग गए, जब बाबा अमरदास लंघते सन मुरदिया दिया हड्डिया ते चल पै जाने, ते कहिंदे उन्होंने तिंजरां विच भी रूह जिहड़ी बोलन लग पैंदी सी। इनी कमाई की कवि संतोख सिंह ने भी दस्सिया, 12 साल गागर धोई। पर मैं एक अर्ज करा, बाबे की सेवा करन दा ढंग सी, एक बाणी विच वचन आउंदा है सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। हुण जे कल्ली असीं इन्नी कु गल कहीए जी बाबे ने पानी धो के गद्दी लै ली, पर मैं एक बेनती करा अपने पिंडां विच झूर जिहड़े ने ना, उन्हां दा विचार इहदा कीता ही होवे, सवेरे भी पानी धोना, शाम नूं भी पानी धोना, उन्हां नूं भी गद्दी किसे ने दित्ती? कल्ली पानी धोण दी गल नहीं, पंक्ति वल ध्यान दिओ, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। ते सानू हर एक नूं पहरा देना चाहिए, जदों तू गुरु की सेवा करे ए मत सोची मैं फलाने बंदे दे इन्ने भांडे मांजे, भांडे संगत दे होण ते चित तेरा होवे मैं गुरु नानक दे भांडे पिया मांजना, चित गुरु वाल। बाबे अमरदास दे मोढ़े ते गागर, चित गुरु वाल। 12 साल गागर धोई, ते अज अमृत वेले जदों गागर लैके तुरिया बाबा, ते इन्ना कु बाणी विच रच गए पता ने बड़े प्यारे बचन कहे, कहिंदे ने गुरु अमरदास जिहड़ी तुसी पढ़ाई कीती ना उह भी एक वाहिगुरु दे नाम दी कीती। कहिंदे ने जदों तेरे नेत्र खुलदे सन गागर चुके, उदों तेरे नेत्रां विचों एक तो बिना दूजा दिसदे कोई नहीं सी, जदों तुसी मुख विचों बोलदे सो वाहिगुरु तो बिना दूजा है ही नहीं। ते बाबा अमरदास पहली गल तां कदी तुसी टिके नहीं, जे टेके किते अख लग गई सुपना आ गया, तेनू सुपना भी एक तो बिना दूजे का आंदा कोई नहीं। पता नहीं कमाई की गल करदिया क्या तै पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो, नैण बैण मोए एक, एक दो थाए न जाण्यो, सुपन एक परपख एक, एक समय लीणो, तीस एक अरपंच सिद्ध तै तीस न खीणो,

सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता लै रहे सी। आओ जितनी कु सूझ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नू भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण कीता है बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहया अहमिस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै कर करनी कस पाइय पाठी भवन प्रेम का पोचा इत रस अमेओ चुआइय। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नू संबोधन कर रहे हैं। कहो नानक सुन भर थर जोगी। एदा मतलब ए शब्द किसे जोगी नू संबोधन करके उचारण किया। पर चेते रखना ए शब्द केवल उस समय तक उस जोगी दे जीवन तक सीमित नहीं सी। ए शब्द आज भी गुरु के शिक्षा नू एक चेतावनी देंदा है ते नाम रस नाल जुड़न दी प्रेरणा दे रहा है। शब्द असा सुने बाबा नानक जी नू जोगी मिले है। इन्हें गल कीती है लिव दी, गल कीती है अनहद शब्द दी। ते जोगियां दे मत मुताबक उन्होंने प्याला भर के नशे का पेश कीता है, शराब का पेश कीता है। ते बाबा जी पुछदे ने ए की, कहन लगे एक वारी पी लिए ते परत के दिन चढ़े तक एदा नशा उतरदा नहीं ते एनी

भांडे उपर जेड़ा बथल फिट किया होर भांडा फिट किया चार चुफेरे अस मिट्टी का पोचा फेरिया तो थलो अग बाली जेड़ा एदा अर्क निकले है इनू असी रस कहने एक बारी पी लिए रात भर एदा नशा उतरदा नहीं। इशारा सी शराब वाल। बाबा जी कह लगे शराब का नशा नहीं ओ रस की हो जेड़ा शाम नू पीता हो सवेरे उतर जाए ते कह लगे मैं उस नाम रस दे प्याले नू पी चुका हां ते एहो जिहा आनंद अंदर बन गया है कि चेते रखो ओदा नशा ओदा सरूर ओदा रस कदी भी उतरदा नहीं। ते जोगिया ने पुछया ए रस किवें तैयार हुंदा है ते बाबा जी कह लगे जोगियो गुड़ कर ज्ञान परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नू गुड़ बनाया है ध्यान कर पावे ओदे नाम विच ध्यान जोड़ना मैं इनू अमवे दे फुल बनाया है कर करनी कस पाई है ते उच्चे आचरण नू किकर दे सक बना दिता है पाठी भवन आ शरीर नू पठी बना दिता है इस मोह दी मोह नू मैं साड़न तुरिया वा पाठी भवन तुसी मिट्टी का पोचा देंदे हो प्रेम का पोचा ते एदे विचो शराब नहीं एक रस अमेओ चवल गया एदे विचो अमृत दीआं बूंदां डिगदीआं एक रस अमेओ चवाईआ कह लगे फिर बाबा हे जोगी मन मत वारो मन मस्त हो गया नाम रस पीवे सहज रंग रच रहा एमस बनी प्रेम निव लागी शब्द अनाहत गया एमस का अर्थ हुंदा दिन ते रात एवो जिहा सरूर ओ विचार है कि मेरे अपने अंदर ही ओ शब्द सुनाई दे रही ओ शब्द आप जी ने सरवण किया ते जे आपां कह दईए भी ए कल्ले जोगी वास्ते सी ते ध्यान रखियो गुरु के सिखो बाबा नानक जी ने इस शब्द विच कल्ले जोगी नू नहीं हर प्राणी मातर नू कह जिस नशे पिछे तू जीवन बर्बाद कर रहे इस नशे ने ना लोक सवार नहीं ना परलोक सवार नहीं ते कई बारी कोई सज्जन कहिंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दे मुतल्लक कुछ बचन कीते ने। हां बाबा अमरदास जी इक बचन करदे ने कहिंदे ने मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पड़ा विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जिदे तीन नाल अपने पराए की पछाण नहीं ओहो जे बंदे नू तां रब की दरगाह विचों भी धक्के पैंदे। हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी भगत रविदास जी का एक शब्द हुंदा नागर जना मेरी जात बख्यात चमारन उस शब्द विच इक तोके कहिंदे ने दुनिया ने सब तो पवित्र गंगा नदी नू मन्निया हिंदुस्तान दे लोगां नू पर भगत रविदास कहन लगे जेकर गंगा दियां लहरां दे पानी दी भी शराब कोई कढ लै ते रब दी बंदगी करन वाला कदी ओहदे वल झाकदा नहीं। उहनां दा बचन सुरसरी सललकृत बारनी रे के जेकर सुरसरी दा अर्थ है तू गंगा दियां लहरां दी शराब बना लै सलल दा अर्थ है लहर सुरसरी सललकृत बारनी रे पर नाल कह दिता संत जन करत नहीं पानंग सतगुरु गुरु साहिब जी ने ओह रस दिता जेड़ा रस नाम दा कदी उतरना नहीं। खैर गुरु नानक साहिब महाराज जी दा पवित्र इतिहास आपां कल विचार कीती सी गुरु नानक बाबा जी ने सज्जन ठग तो सज्जन भाई बना दिता है अगे लोकां नू ठगदा सी अज एहो जिहा सज्जन बना दिता नाम दा व्यापारी बन गया। गुरु नानक साहिब महाराज सज्जन तो बाद हर द्वार दी धरती ते पहुंचे ने इत्थे मेरे दाता जी ने कुछ एहो जिहा कौतक वरताए जेड़ी कई मुद्दतां तो उन्हां दी मनौत सी एक परंपरा बनी हुंदी सी ते पांडे ने मर्यादा बनाई सी ते गुरु नानक दे उस दलील ते नाम दी बरकत सामने कोई खलो ना सकिया। हर द्वार पहुंचे ने अजे सूरज दी टिक्की निकल रही है ते लोग गंगा विच इशनान तय करदे ने ओ लोग तन नूं तां धो रहे ने पर मन उन्हां दा दसी पासी

हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देशा ना हों जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया परणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरया परणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरया परम सम्मान योग चवर शतर तख्त दे मालक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर रात्रि दे इस विशेष गुरमत समागम दी हाजरी भर रहे गुरु सवारियो आप जी ने अमृत बचना दा कीर्तन गुरु प्यार वालियां पासों सरवण कीता है। आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कृपा दा सदका हजूर दे अमृत बचना दी विचार आपां कर सकीए खास करके अज सवेरे अमृत वेले जिथे हरिमंदर साहिब विचों धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रब्बी फरमान नू अकाली हुक्म नू आप जी ने सरवण कीता उथे अज कत्तक दा महीना प्रारंभ होया है। सारे महीने विचों दो गल्लां बड़ियां स्पष्ट ने ते विचार भी आपां अज दे दिन नाल संबंधित ही करनी है। पहला बचन है कि कर्म जो तू इंसान कमा रहा है अपने कीते हुए कर्मां दा दोष दूसरे दे सिर ना मढ़। पर अखीर विच इक किरपा कीती उहने कि जे तू कर्म माड़े कर लेने ते कत्तक दे महीने विच साध संगत गुरु दी संगत दा आसरा ले तेरे अंदर दे सारे चिंता झोरे अपने आप ही मुक जाणगे। सतगुरु ने दो बचन अज कहे, पहला रोग है फिर उस रोग दी औषधि उस दी दवाई है। रोग की है कि कत्तक कर्म कमावने दोष ना काहूं जोग ते की कर्म कमाया। कहन लगे परमेश्वर ते भुलियां व्यापन सबे रोग वेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिनमें कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस्त है रोवे रोज। अखीर विच इक बचन क्यों ने कहन लगे जे तू इस चिंता नू इस झोरे नू खत्म करना है ते फिर एक काम कर के कत्तक होवे साध संग बिन सह सब है सोच। सिर्फ दो तुकां जेड़े कर्म कमाए ने ए रोग सहेड़े ने ते जे तू अपने अंदरों चिंता झोरे नू खत्म करना चाहना है ते कत्तक दे महीने विच साध संगत दा ओट आसरा ले। करो किरपालता
आप जितने भी कृपालू सतगुरु जी दी चरण शरण विच इकत्र होए हो आशीष बख्शो और गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी विच कर्म फिलासफी दे संबंधी सतगुरु ने सानू अनेकां प्रमाण दे के सुचेत कीता है कि जेड़े कर्म इंसान करदा है इस नू अपने कीते हुए कर्म जो बीज बीज रहा है इस दा फल एक दिन जरूर वड़ना पाएगा। ते असी रोज गुरु नानक साहब जी दा एक अमृत बचन पढ़ने हां ते जपजी साहब दी बाणी विच ओ बचन ने के पुन ते पाप केवल कहन मात्र नहीं, जो इंसान कर्म करदा है एक कर्म मानो अपने शरीर धरती विच बीज बीज रहा है ते इन्हां कर्मां दी बीज दी बीजी कोई फसल एक दिन जरूर कटेगा। साहब दे बचन सी पढ़ने पुन्नी पापी आखण नाहे के पुन ते पाप केवल कहन मात्र नहीं, पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना जो इंसान तू करना है, मत सोच के मेरे कीते हुए ने नाल नहीं तुरना। पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख ले जाहो ते अगला बचने आपे बीज आपे ही खाओ। जो तू बीजिया है तेनू अपने बीजे हुए नू कटना पेगा, आप तेनू वडना पेगा, अपने बीजे हुए नू ते तू आप ही खाएगा। थोड़ा जिस विषय ते आपा टिकना है ते फिर सम्राट गुरु दी शरण विच आपा किवें जाने आ जे अपने कर्म कीते हुए भोगने। मैं बाणी विचों कुछ उदाहरणा दे के फिर अगे तुरना चाहांगा कि पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख ले जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवो जाहो। जदों असी सलोक पढ़ने हैं धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने अखीर फिर जाके सुचेत कीता ऐ इंसान के देख जेड़े तेरे चंगे जा मंदे कर्म ने ए परमात्मा दी हजूरी विच वाचे जांदे ने। तेरे कर्मा अनुसार जे ता कर्म शुभ ने प्रभु दे नेड़े होएगा ते नहीं ता अपने कीते हुए कर्मा अनुसार उस प्यारे वाहगुरु जी तो दूर भी जा सकना। बचन सी पढ़ने चंगियाईया बुरियाईया के चंगियाई ते बुरियाई नू ते यकीन करियो गुरमुखो। जेड़े असी रोज बचन पढ़ने हां ए केवल दोहरान मात्र तोता रटन नहीं, जेड़े पढ़ने इन्हां पिछे हकीकत भी है सच्चाई भी है। चंगियाईया बुरियाईया वाचा धर्म कदूर ते अगला बचन करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कतक कर्म कमामने दोष ना काहूं जोग। साहब कृपालू कहिंदे पया के करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कोई कर्मा करके साईं दे नेड़े हो गया ते कोई कर्म करके परमात्मा तो दूर चला गया। इस तो अगे तुरिए गुरु ग्रंथ साहब दे अमृत बचना विच आसा की वार विच हजूर दी एक अमृत बचन पौड़ी असी पढ़ने। धन गुरु नानक साहब ने उते फिर सुचेत कीता है कहिंदे ने देख ऐ इंसान आ जड़ा तेरा तन है ए शरीर ता इस तरह है जिवें अपने जिस्म उपर अपने तन उपर तू बस्तर पहरना है। तू एक दिन जिवें बस्तर पुराने ने इस नू उतार देना है ते सच जान इस शरीर दे कपड़े नू भी इस संसार भी तू छड़ के जाना है ते अगे नाल तेरे जो चलना है ओ तेरे चंगे जां मंदे कर्म ने, इत्थे तू हुक्म कीते ने अपने मन पौंदे परमात्मा दी दरगाह विच तेरे हुक्म नहीं, उथे तेरे कीते हुए कर्मा अनुसार नितारा होवेगा। साहिब दासी ये बचन पढ़ने हां कि पौड़ी कपड़ रूप सुहावना सिर्फ एक तुक ते जे मैं अर्ज कर रहा कि कतक कर्म कमावने दोष ना काहूं जोग। कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना, इस सुहापन नूं इस तन नूं इस शरीर नूं एक दिन आपां दुनिया भी छड़ के चले जाना है। शरीर आया जरूर नाल है
ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲਨੇ ਹਾਂ, ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਤੀ ਲੱਟ ਲੱਟ ਕਰਕੇ ਬਲੇ, ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੱਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਬੱਤੀ ਲੱਟ ਲੱਟ ਕਰਕੇ ਬਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਬੁੱਝ ਜਾਣੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਤੀ ਬੁੱਝ ਗਈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕੁੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ 12 ਮਾਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿ ਕੋਈ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਈਏ। 12 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏ

इकट्ठे हुए मैं पढ़ रहे एक बुजुर्गां दा जीवन कह लगे आओ सुखमनी साहब दे अर्थ करिए ते बिरध बाबा 85 साल दा उन्हूं भी लाया बाबा जी अज अर्थ कर लगे हैं अर्थ पहले श्लोक दे ते कर ले जदो पहली तुक पढ़ी ना सिमरो सिमर सिमर सुख पावू कल कलेश तन मैं मिटावू बाबा सोटी लैके उठ पिया चेलिया ने कहा बाबा जी अजे ते अर्थ शुरू होए ने कहिंदा बस आ ही कमा लिया ते समझ लो सब कुछ कमा लिया प्यारे हो आंदा चौखे अर्थ की गुरु ने गल मुका दिती तू सुख पालना है ना सिमरो सिमर सिमर सुख पावू कल कलेश तन मैं मिटावू बस बस इनी गल ते मैं पहरा देन चलिया दूजी दे अर्थ मैं कल नू पुछांगा जे मेरे अंदर नू सुख मिलिया ते नहीं तो एदी कमावांगा जी देखो इनू कमाओ बच्चे लैके जाओ ए उथे लंगर दे बर्तना विच खलोवो अमीरी दा करीच ना करिए मेरे घर अरबा रुपये ने नहीं चेते रखियो दे दर दे झाड़ू लाण वाले उस दे दर दे जोड़िया दे धूड़ दे विच नवाबियां पईयां ने सरदारियां पईयां ने बच्चियां नू लिजा के आप खलोवो पहला पर एक तरीका है सेवा करन दा मतलब गल्लां करनियां नहीं लंगर दे बर्तना विच तजर्बा करियो जेड़ा भी शब्द बच्चे नू चेते वे उन्हूं इको गल कह पुत्र एक घंटा जे भांडे मांजने सिर्फ तू जो तेन हुंदा है बोली जाई पहला सेवा विच खलोवो परत के इशनान करके अंदर जाओ ते घंटा गुरु रामदास दे चरणा विच बिठा के लियायो कदी दीप सिंह नू मां इस तरह ही हरिमंदर विच लैके जांदी सी क्योंकि पिंड नेड़े सी मां रोज लैके जाना जदों हरिमंदर ते इको गल कहनी गुरु रामदास कृपा करी मेरे दीपे नू सिखी दी दात दई जेड़ा बच्चा मां भांडिया विच जां उत्थे सेवा विच लिजांदी रही जिदन लोड़ पई पहला तां जांदे सन मां कोलो दाने लैके कुछ भेटावां लैके अज लोड़ पै गई दमदमा साहब तो तुरे ते आवाज दित्ती बापू गुरु रामदास मां नाल मत्था टेकदा सां पैसे दा टके दा अज पल्ले कुछ नहीं कला सिरे सिर लैके आया प्रवान कर लगे ओह इक बच्चा सी एक पंजाबी दे अदीब ने बहुत सोहने शब्द कहे ने तुर लग्या क्या सी उस बजुर्ग बाबे ने भाजड़ा पावांगा सिखी दे वैरियां नू मैं सिखी सिदक नू दाग लगांगा ना मैं भाजड़ा पावांगा सिखी दे वैरियां नू मैं सिखी सिदक नू दाग ना लांगा मैं कड़ा प्रसाद गुरु घर चढ़ाण लोकी ऐ पर सीस प्रसाद चढ़ांगा गुरु कृपा करे तुहाडे कीते होए इस उपराले नू भाग लाए बच्चे तुहाडे होर गुरमत नाल जुड़न इनिया को बेनतियां प्रवान करिया जे साध संगत बेअंत भुला हुई ने पता नहीं जदों तो मैं दिल्ली आना पिया जदों भी आया टेंशन ची एक थां कथा दो थां कथा पर चित करदा हुंदा भी इको थां जाइए ते टेक के कथा होवे बाणी दी गुरु मेहर करे अगों जदों सबब बनिया फिर आप संगत दे दर्शन दीदारे करांगा असीस बख्शियो आओ मिनट सिर्फ तुहाडे दो लैणे ने सारे टेक के ना अपने अंदर नू टिकाओ कथा दा मतलब जुड़ना है कोई भी रसना सतगुरु दे नाम तो वांझी न रहे सिर्फ दो मिनट उच्ची आवाज विच इक पुकार करो सच्चे पातशाह साडे अंदर नू भाग ला दास पहला बोलेगा आप संगत ने उच्ची आवाज विच पुकारिए साडी शायद सुनी जाए करो कृपा और उच्चारण करो।

महान पुरख गुरु अर्जुन पिखो नयन अब राखो दास पाट की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी छीनत वस्त्र दीन बहु साज सुदामा अपदा ते राखिया गणका पड़त पूरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए

शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सुकहु टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै

गुर जगत फिरन सिंह अंगरो राज जोग लहना करे अमें दिष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसै दुख संसारे खोवे गुर नवनिद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सुकहु टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै

देश की इज्जत बचाई। अज देश दे सिंघासन ते ये बैठे ते खिमा करने सब एहसान भुल गए, बहुत भुल गए। मैं सारियां नूं ते दोषी नहीं ठहरांदा, पर खिमा करनी इस देश की बहुसमति दोषी है। इन्नी मैं अर्ज कर दी, इन्ना आख सकदा, इस देश की बहुसमति जिहड़ी है वह दोष तो बच नहीं सकती, और इस दोष तो वह भी नहीं बचन गए। ठीक है, पीड़ा समय विपता समय भाई महा सिंह ने ते साथियों ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नो विदावा जरूर दिता सी, पर पश्चाताप भी किया सी, ते सतगुरु तो अपनी जाना भी निछावर कर दितियां, ते सतगुरु ने विदावा फाण भी दिता, पर हुण ते ऐसे दुष्ट पैदा होए ने जिन्हां ने विदावा लिख दिता ते लिख ही दिता है, बस वह दुष्ट मौजूद ने जो फिर नेड़े नहीं आए। लिख दिता है विदावा, असी ना गुरु दे ना संगत दे ना पंगत दे। ते महासिंह ते हर वक्त आउंदे ने, पर खिमा करनी असीं उस महासिंह तो सदके जांदे आ, कुरबान जांदे आ, जिन्हें विदावा जरूर लिख के दिता है पर पश्चाताप होया। दाता यह गल सानू नहीं करनी चाहीदी सी। ऐ जिहड़े मूंह बोल असीं आखे ने तैथों टुटे आ, तेरी संगत तो टुटे आ, यह गलत होया। साथों महासिंह ने फिर साथी इकट्ठे किए, विदावा जो लिख के दिता सी, इतिहास कहिंदा है वह भी मेरे पातशाह ने अपने कोल रखे होया सी। मुकतसर जिसनों कहिंदे ने, ये 40 सिंह सन जिन्हां ने विदावा लिख के दिता सी, ते 40 दे 40 शहीद हो गए सतगुरु की खातर, देश की खातर, धर्म की खातर। ते बादशाह लभदियां लभदियां फिर इन्हां दे कोल पहुंचे ने, एक एक नूं असीस दे के कहिंदे ने, यह मेरा 10,000 ही, यह मेरा 50,000 ही, यह मेरा 5,000 ही है, यह मेरा 1,000 ही है, यह मेरा 1,00,000 ही है। इंज वर देंदे गए, तू भी मुकत, तू भी मुकत, तू भी धर्म तो सदके होया है, धर्म तो कुरबान होया है, ते धर्म जिन्हां नूं प्यार है ते धर्म का फल ते फिर मुक्ति है। जे धर्म ने मोक्ष नहीं देनी तो होर किसने देनी है? जे धर्म ने मुक्ति नहीं देनी। पर इतिहास कहिंदा है एक सिसक रहा सी, ते इन्हां चालियां दा मुखी सी भाई महा सिंह। सतगुरु जद इहदे कोल पहुंचे, मूंह कहा यह मेरा 1,25,000 बैठा है, और शीस नूं अपने पटां ते रखिया, हाथ जोड़े भाई महा सिंह ने, ते आखिया दाता आखरी प्राण पखेरू उड़न लगे ने, वो मेरा विदावा फाड़ देना। भुल हो गई, गलती हो गई, ते सतगुर कहन लगा, आन सिर दे उते हाथ रखे, तू मुकत होया, तू मुकत होया। उन्हां चालियां दे सदके अज उस स्थान दा नां है मुकतसर, और महा सिंह दी नक्शे कदम ते चल रहे हैं, उत्थे फिर कईयां ने मुक्ति प्राप्त कीती है। इतनी भी मर्ज कर दें, उत्थे फिर घटना घटी, महा सिंह दे दुले खून ने कुछ फिर क्रांति लियांदी। व्यर्थ नहीं जांदा शहीदां दा खून, भाई महा सिंह दा खून कोई व्यर्थ थोड़ी जाएगा। मैं इरमनियां दे कुछ जुल्म देण दे ढंग पड़े सन, तसीये दे दे के अगले नूं मारना है। ईरान विच इक म्यूजियम है, इरमनिया नूं किवें तसीये दे दे के मारिया गया, तो जिहड़ा बादशाह सामने तख्त ते बिठाया दिखांदे ने तस्वीरां दे चों, कहिंदा है इस ढंग नाल तसीये दे दे के मारो, खून थले नहीं डुलना चाहीदा, खून नहीं वगना चाहीदा, गला दबाओ, होर तरह तरह के तसीये दो। एक नूं लिटाया होया सी ते मूंह विच कीप अगेर नहीं ओह पाई हुई, ते उबलदा होया तेल मूंह विच पाया जा रहा है। ते मैं ईरान दे शहर असफान विच म्यूजियम देखिया, ते भाई मक्खण सिंह जो तैरान श्री गुरु सिंह सभा दे प्रधान ने, ते काफी देर तक जब मैं वेखदा रहा, ते मेरी बांह पकड़ के कहण लगे शिराज जाना है, रस्ता बड़ा लंबा है, ते चलो निकलो। मैं कह नहीं, अज दी रात ते फिर असफान रवांगे, मैं म्यूजियम सारा वेखना है। मैं ते अज 4-5 तस्वीरां देखियां ने, ते मैनू कहण लगे तू 4-5 तस्वीरां घंटे च वेखियां ने, ते सारा किन्ने च वेखेंगा? मैं कह अज नहीं जाना।